ना ताका ताकेट दी दीन तादी गिना तुम ताकर तुम ताकर तुम तादी ता ताका ताकेट दी दी दीन दी दीन दी दीन दी दीन गिरता गिरता गिरता ताकेट ताका जिन्ना ताका दीन ताका ताकेट ता तिंगिना तो हा तिंगिना तो हा तिंगिना तो हा